0: strength for the win.
1: I mean, it's kind of nice in match play, right? You're not worried about the one coming back. You know what you have to do, and it was just right edge and firm, and I've held a couple of good putts this year, and there's another one.
0: And Northland can wrap up their Ranfurly Shield season when they face Counties Monaco at Whangarei in NPC Rugby today. Kickoff's at 2:05.
2: Sports News.
3: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
4: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
5: सूचित किया जाता है नवा नवा नंदेरा फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा लाल माटी रेकी रेकी फिजी के स्वर्गीय मिस्टर एंड मिसिस महादेव के पुत्र कस्तूरी चंद के पति और रीना सिंह और हेमिल्टन के कैलाश चंद के पिता रामाचंद की मृत्यु हेमिल्टन में हो गई. अंतिम संस्कार आज 2:30 PM हेमिल्टन पार्क सिमेट्री एंड क्रेमोटोरियम हेमिल्टन में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप कैलाश को 0273852026 पर 0273852026 पर कॉल कर सकते हैं. सूचित किया जाता है नवा नवा नंदेरा फिजी के भूतपूर्व निवासी तथा लाल माटी रेकी रेकी फिजी के स्वर्गीय मिस्टर एंड मिसिस महादेव के पुत्र कस्तूरी चंद के पति रीना सिंह और हेमिल्टन के कैलाश चंद के पिता रामाचंद की मृत्यु हेमिल्टन में हो गई. अंतिम संस्कार आज 2:30 PM हेमिल्टन पार्क सिमेट्री एंड क्रेमोटोरियम हेमिल्टन में किया जाएगा. श्रद्धांजलि के लिए आप कैलाश को 0273852026 0273852026 पर कॉल कर सकते हैं.
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.

0: Yo.
1: Big Radio Pop. You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं अभी भी हूँ आपके साथ में सुबह 6 से लेकर और 1 बजे तक आपका साथ देता रहूँगा. आज कुछ अलग है जबकि फर्स्ट आवर ऑफ रेडियो पब मैं लेकर आ रहा हूँ आपके साथ में और मेरे बाद में 1 बजे के बाद में आपके साथ देने के लिए केतन हो जाएंगे. लेकिन अभी के लिए मैं हूँ आपका साथ दे रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर. साथ देते रहिए, बस कदम से कदम मिलाकर इस आवा को भी तय कर लेंगे. इस आवा की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह और साथ में तुलसी कुमार की आवाज़ में. आपको भी कुछ सुनना है, आप अपने रिक्वेस्ट डेडिकेशंस हमारे पास में 5599 पर भेज सकते हैं या फिर आपको ओने आकर बातें भी करनी है तो द नंबर इज़ 0800-004-866.

0: समय की ओर ध्यान देते हैं तो इट्स 14 मिनट्स आफ्टर 12 और जबकि बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ये चल रहा है जेडब्ल्यू मैरियट ओकलैंड में और यहां पर हमारी साथी कशिका है जिन्होंने सुबह से रिपोर्ट देते हुए बताया है कि कितने फायदे हैं बेनिफिट्स है दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के। एक बार फिर कशिका जी हमारे साथ में शामिल हो गई, वेलकम कशिका जी।
1: थैंक यू सो मच अवि, एंड बीइंग अ वेरी बिजी डे एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साउथ ओकलैंड की तरफ से भी अभी आए हैं एंड मेरे साथ एक हमारे लिस्टनर हो गए हैं। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ का एक्सपीरियंस?
2: नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं आपका रेडियो में सुन के यहाँ पे आया हूँ और लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी है इन दुबई, तो मैं भी सोचा था इन्वेस्टमेंट करने के उसमें था, तो इसीलिए मैंने इनके वीडियोस देखे प्रियंक भाई के, तो लाइक इट्स रियली गुड, तो मैं बात करता हूँ, देखो क्या बनता है यहाँ पे।
1: हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, तो आई हैव, थैंक यू सो मच जी, तो आई हैव गॉट प्रियंक जी विद मी हियर राइट नाउ। Firstly, the question which is coming into my mind is why Build Caps? You know, Priyank ji is the CEO of Build Caps, जो पूरी टीम लेकर दुबई से यहाँ पे आए हैं। मैरियट होटल में मैं बैठी हूँ, मैं कॉफी पी रही हूँ, मजा आ गया कि कॉफी पी के, खाना पीना भी लगाया हुआ उन्होंने ताकि भूख लगे, तो आप कितना लंबा टाइम भी रुके रहो कुछ खाते पीते रहो। सो टेकिंग यू बैक टू प्रियंक जी, द CEO of Build Caps, why do you think it should be Build Caps only?
3: See, basically, BuildCaps is a one-stop solution when it comes to Dubai real estate. We are award-winning, most trusted real estate agency in the UAE, and we provide one-stop solution for investors and end users, those who are looking to invest in Dubai or they are looking for their end use. So, BuildCaps आज 100+ professionals का एक team है जो आपको यहाँ न्यूजीलैंड में बैठे बैठे सिर्फ एक मैसेज या कॉल पे आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, प्रॉपर्टी का बाय सेल, अगर कुछ भी रिलेटेड टू दुबई है तो BuildCaps इज अ सॉल्यूशन, वेदर इट्स अ कंपनी सेटअप, गोल्डन वीसा, एनी रिक्वायरमेंट यू हैव इन दुबई, BuildCaps इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज रेकमेंड पीपल टू टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम ट्रस्टेड एजेंसी ओनली हु प्रोवाइड्स यू वन स्टॉप सॉल्यूशन, बिकॉज बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम ओवरसीज, यू नो समटाइम्स व्हेन यू बाय फ्रॉम समवन हु इज नॉट रिलायबल और जेन्युइन, यू डोंट गेट सपोर्ट। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर हियर, टू एजुकेट पीपल इन अ राइट वे।
1: Okay, another question for you would be, of course, why now? You know, अभी दुबई का जो आप situation देख रहे हैं, people have apprehensions about Dubai, so why now and why should people come to Dubai first of all?
3: See, first of all, why now? Why now? क्यों? क्योंकि ये जो time है, ये हर एक asset cycle में एक time आता है जहां पर after a long rally market थोड़ा सा saturate होता है, market एक थोड़ा सा stabilize होता है। अभी जो time है दुबई में वो सबसे best है, क्योंकि यहाँ ये position के बाद prices will go up. After any war situation, global inflation rise होता है, उसकी वजह से हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आता है, करेंसी में इम्पैक्ट आता है। तो अभी जो प्राइसेस है वो आने वाले 2-3 साल में ये प्राइसेस नहीं रहने वाले हैं, इट विल राइज मिनिमम 30-40% फ्रॉम हियर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा है तो यही सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी जो पेमेंट प्लान मिल रहे हैं, जो बेस्ट डील्स मिल रही है, वो पहली बात तो आगे आने वाले टाइम में नहीं कंटिन्यू रहेगी और प्राइसेस भी ये सेम नहीं होगा। तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट टाइम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करने का। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि व्हाई न्यूजीलैंड पीपल शुड थिंक अबाउट दुबई, तो हमारा जो ये कहना है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बकेट। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज या सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ न्यूजीलैंड के अंदर ही है। जब ऐसा करते हो तब क्या होता है कि जब इकोनॉमी डाउन होती है या रिसेशन आता है, देन यू हैव कंप्लीटली स्टक इन वन एसेट साइकिल और वन काइंड ऑफ मार्केट ओनली। सो पीपल ऑलवेज शुड कंसिडर दुबई एज देयर सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अगर समझो कहीं पे भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अभी थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में दुबई जैसे अपकमिंग ग्रोइंग मार्केट में पैसा लगाने से आपकी कैपिटल ग्रो होती है, एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट होता है और आने वाले टाइम में एक आपके पास प्लान बी रहता है कि इन केस अगर ज्यादा इकोनॉमी में स्ट्रगल है, जैसे अमेरिका यूरोप दे हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस लॉन्ग, तो ऐसे सिचुएशन में दुबई जैसे मार्केट ने लोगों को एक होप दिया है, बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिए हैं और एक प्लान बी भी दिया है लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि जो न्यूजीलैंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा दुबई के बारे में सोचना चाहिए।
1: Absolutely, and before I take you back to the studios, let me remind you, Buildcaps ने एक जो award है real estate का, वो ultimate realty awards जो है, ये इन्होंने gain किया, the most trusted agency of UAE, and the second one is Buildcaps was honored the ultimate realty awards जो के Khaleej Times and Gulf News, दो biggest newspapers जो है, उन्होंने cover भी किया है, तो make sure you find your way to JW Marriott's, जहाँ parking आपके आसपास बहुत है, and साथ में ये 8 बजे रात तक यहाँ रहने वाले हैं। Along with this, कल का दिन भी जो है, वो Buildcaps जो है, आपके लिए यहाँ पे आपके future को build करने के लिए 10 से 8 बजे तक JW Marriott's में आपका इंतजार करेंगे। तो yes, I will be back with my last report, and in case there is any सवाल which anybody has got in their mind, तो please 5599 पे आप text कर सकते हैं अभी को, and I will make sure that we get them answered. Taking you back to the studios, this is Kashika.
0: Thank you so much, Jethi Kashika, with the latest updates और Dubai Property Expo के बारे में बता रही थी। तो अगर जो आपके पास में कोई सवाल है, 5599 पर आप ज़रूर टेक्स्ट करें और यहाँ से हम पास ऑन करेंगे कशिका को, सो दैट वी हैव देम आंसर्ड फॉर यू। ये सभी कुछ आपके साथ में, एक और एक रिपोर्ट बाकी है बस थोड़ी देर में।

0: हाँ, पर मैं अभी आपको बता दूं, जबकि एनआरएल की जो फिक्चर्स है यहाँ पर, जो खेल कल हुआ यहाँ पर, डॉल्फिन्स की हार हुई है रूस्टर्स के खिलाफ 36-20 से, तो रूस्टर्स क्वालिफाई हो चुकी है फॉर द ग्रैंड फाइनल। और कल एक खेल और होने को है, जबकि 7 बजे रात कल नाइट्स और पैंथर्स के बीच में रहेगा संडे 7 PM, और इनमें से जो भी जीतेगा वो रूस्टर्स का सामना करेगा एनआरएल के फाइनल्स में। तो वॉरियर्स ड्रॉप आउट हो चुके थे लास्ट वीक, लेकिन अभी जो कंपटीशन है फाइनल स्टेजेस में है, जबकि रूस्टर्स क्वालिफाई हो चुकी है। अब देखना ये है कि पैंथर्स और नाइट्स के बीच में कौन सी टीम है जो कल क्वालिफाई होती है।
1: Radio Pub.

हम पर यह है रेडियो पब का कारवा और आप हमें 104.2 एफएम साथ में रोवा पर सुन रहे हैं। अगला गाना सुनाने से पहले ये गाना सुनिए और आप मुझे जवाब में ये बताइएगा मैसेज करके कि इस गाने में जो शाहरुख खान म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो क्या है। फिल्म आपने देखी है, काफ़ी पसंद भी किया है, गाना सुनिए और गाना सुनने के बाद में मुझे बताइए कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस सॉन्ग में या फिर इस पिक्चर में वो ज़्यादातर के प्ले करते हैं वो क्या है। 5599 पर अपने नाम के साथ में भेजिए।

0: हाँ, जो सवाल हमने किया था तो हमारे पास में सन्याल साथ में मनीषा आपका जवाब आया है। शाहरुख खान प्लेज मैंडोलिन इन मोस्ट ऑफ द मूवी और इस मूवी में जहाँ भी आप उनको देखेंगे इज प्लेइंग मैंडोलिन। और मैंने क्यों नहीं ना जाने क्यों इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि ही इज़ कैरिंग अ गिटार, लेकिन एक्चुअली ये मैंडोलिन है। और आपको ये भी बता दूँ कि हमारे हम पॉडकास्ट में सिंडी और रुजबे ने बातें की है नवतेज रंधावा के साथ में, जो कि कैंपेन मैनेजर है फॉर नेशनल पार्टी इन मनेरवा, साथ में ओटाहू। यहाँ पर काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं उनके साथ में और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन थे इसमें इमिग्रेशन पॉलिसी शामिल थी, साथ में इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटीज़ और हेल्थ केयर को लेकर क्या कुछ हो रहा है, ये सभी पर बातें हुई हैं। तो अगर जो आपने इसे मिस आउट किया है और सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिख कर 5599 पर भेजें, जबकि इस साल बाद में इलेक्शन भी होने को है तो अभी से ही आपको सुनते रहना है और गौर फरमाना है कि ताकि आप अपना मन बना सके कि किसको आप अपना कीमती मत दोगे। इसके साथ में ब्रेकफास्ट कैचअप भी है जहां पर पूजा और विजय अक्सर कुछ ऐसे बातों को लेकर आते हैं जो हमारे कम्युनिटीज पर इम्पेक्ट करती हैं, तो ये सुनने के लिए BF लिखकर 5599 पर जरूर भेजें।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
2: कभी भी कहीं भी
3: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: माँ, एक चोटी होती है ना?
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
8: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
9: Auckland, time's running out to make your emergency plan this daylight saving weekend. What would you do if extreme heat caused a power outage? How would you get home if the bridge is closed in a storm? If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
10: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
11: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
12: Our first train ride. We're surprising the kids with Te Waihoretu Station and a movie.
13: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
14: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
15: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
2: The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Yo. Radio Pub.
0: यह है रेडियो पब, मैं हूँ आपका साथी अभी और एक और एक रिपोर्ट लेकर बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ में। कशिका जी जा रही थी चाय पीने, हमने रोक लिया है और JW मेरियट से एक और एक रिपोर्ट के साथ में शामिल हो गई हैं। कशिका, वेलकम।
17: थैंक यू सो मच। यस, देखो मैं तो मैंने कहा मैं ब्रेक ले लेती हूँ, फिर मुझे भूल ही गई क्योंकि यहाँ इतने यहाँ पे लिसनर्स वगैरह आए हुए थे, इनसे बातचीत कर रहे थे एंड पता चला लेट मी जस्ट आस्क देम अराउंड दैट हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट. हाय गुड आफ्टरनून, हाउ डिड यू लाइक द एक्सपो टुडे?
18: आई लाइक्ड इट वेरी मच, अ लॉट ऑफ वैराइटीज एंड प्रॉपर्टीज. या
17: ओके, एंड यू थिंक यू माइट जस्ट इन्वेस्ट?
18: या गुड ऑप्शंस,
17: गुड ऑप्शंस, ग्रेट. हाउ डिड यू लाइक इट हियर?
18: Also, it was very good. Lots of nice properties to look at.
17: Okay. Yeah. Great. आप देखो एकदम suddenly इनको break के उसमें ले लेते हैं ना, तो उनसे बात कर. I think आप तो हिंदी बोल लेंगी. कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार.
18: नमस्ते. बहुत अच्छी variety है और definitely अगर कोई move करने की सोच रहा है तो this is the right option and आना चाहिए और discuss करना चाहिए. बहुत अच्छे तरह समझा रहे हैं और बहुत अच्छा options भी दे रहे हैं.
17: क्या बात है. तो वी जस्ट टेकिंग यू बैक अगेन टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर बिल्ड कैप्स एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, अवार्ड विनिंग टीम है इनके पास एंड इनके पास दरअसल 2040 तक का एक अभी प्लान जो है, जो सिटी जो डिजाइन की जा रही है उसमें दुबई एयर टैक्सीज जो है अभी रोड टाइम टू एयर टाइम फ्यूचर इज ऑलरेडी इन मोशन आई कैन से दैट. और साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में टैक्स एफिशिएंट एनवायरनमेंट, टूरिज्म एंड लाइफस्टाइल का डिमांड, अपने देश के बहुत नजदीक, इन्वेस्टर फ्रेंडली ओनरशिप, ग्लोबल कनेक्टिविटी जो है जहाँ पे एयरपोर्ट वाकई ही आपको हर एक जगह से करता है कनेक्ट, और रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट मार्केट आपके लिए एकदम अवेलेबल हो जाता है. यही कह सकती हूँ दैट बिल्ड कैप्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे 55 कंट्रीज जो हैं तक ये पहुंच चुके हैं, 18 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस रखते हैं, मोर देन 2000 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं एंड प्रॉपर्टीज जो हैं जो एईडी जो हमें दिरहम्स होते हैं उसमें 1 बिलियन तक की प्रॉपर्टीज ये बेच चुके हैं. इनका ऑफिस शेख जायद रोड में है, लोकेटेड है एंड साथ साथ ये कह सकती हूँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी की बात करती हूँ एंड नॉट टू फॉरगेट कि बिल्ड कैप्स रियल एस्टेट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडर मेंबर ऑफ बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट सीए अंकुर अग्रवाल एंड हिज पार्टनर द फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी विवेक ओबरॉय, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट भी किया है और साथ साथ ही इज द को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ओबरॉय द बॉलीवुड एक्टर विद बिल्ड कैप्स एज वेल. तो भाई आप डेफिनेटली जान ही सकते हैं कि बॉलीवुड का स्टैम्प ही लग चुका है और यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप पहुंच सकते हैं दुबई के इस ब्यूटीफुल से एक्सपो में, रियल एस्टेट एक्सपो में जो जेडब्ल्यू मैरिज में आज सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक चलने वाला है और कल भी सुबह 10 से लेके रात 8 बजे तक ये चलने वाला है. पार्किंग की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्री पार्किंग कई जगह पर है और साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइसेस पर भी पार्किंग अवेलेबल है एंड ऑप्शंस के लिए इनके बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्हाई दुबई, व्हाई पीपल आर थिंकिंग अबाउट दुबई राइट नाउ, फ्यूचरिस्टिक दुबई आई कैन से दैट. बिग ब्रांड्स हैव गॉट एसोसिएटेड विद दुबई एंड यस यू नो बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दुबई विल बी फैंटास्टिक. तो रेंज इनके पास बहुत सारी है, आपको यहाँ पे पहुंचना है. And this was my final report for Dubai. Because Dubai, I'm so connected. Being there for 10 years, it's really making me feel so nostalgic about it. But now taking myself back to the coffee and chai, which I was definitely wanting to have, I'm great. And देखिए हाँ, listeners भी आने शुरू हो चुके हैं और आपसे hello hi भी कर रहे हैं. So thank you once again. And I'm giving my finale here. थोड़ी देर बाद मैं Facebook live होने वाली हूँ. तो आपको यहाँ का माहौल भी दिखाऊंगी. टेकिंग यू बैक टू द स्टूडियोज एंड दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम जेडब्ल्यू मैरिज बिल्ड कैप्स. आके जरूर अपने फ्यूचर को बिल्ड कीजिएगा. बाय.
0: थैंक यू. ये थी कशिका जी जो शामिल हो गई थी अपने आखिरी रिपोर्ट के साथ में. और आपको बता दूं जो दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो है, अगर जो आप भी जाने की सोच रहे हैं तो जेडब्ल्यू मैरियट ओकलैंड में ही आपको जाना है, जहां पर ये आज रात 8 बजे तक रहेंगे. इसके साथ में कल भी एक मौका है आपके पास में, जबकि सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक आपको एडवाइस दिया जाएगा. आपको जो कुछ भी आपके पास में क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं और उसके बारे में ही यहां पर जो फ्रेंडली रेप्स है ये आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे. तो याद रहे, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो एट JW मेरियट इन ऑकलैंड फ्रॉम 10 AM टिल 8 PM, आज 8 PM तक, और कल भी 10 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक. इसी के साथ साथ अब जबकि 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, तो मैं भी यहाँ से अब निकलता हूँ. और आपने सुबह 6 से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. 1 बजे से आपके साथ में हो जाएंगे केतन. हमारी और आपकी मुलाकात अब होगी कल 12 पर. लेकर आऊँगा आपके लिए जस्ट चिल. अभी वीकेंड बिल्कुल यंग है, आप इन्जॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. डू टेक केयर. आपसे फिर मुलाकात होगी. बाय.

0: Radio Pub. Non-stop Bollywood.
1: Hum.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Driving you home.
3: Drive Show with Sandy and Rusby.
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
5: ये गलत बोल दिया यार.
4: और पहनता भी नहीं है उसको.
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो.
5: अभी ब्रांड हो गया ना.
4: रुस्बे के बाल लगे उस.
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.
7: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना.
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: Grab your friends and whānau, pull out your pinkest outfits and join Pink Ribbon Walk this October. Walk together, have some fun, and show your support for people affected by breast cancer across New Zealand. Get tickets now at pinkribbonwalk.co.nz.
12: This is Warehouse Country, where the best price on nature's fresh bread, the best price on eggs, and the best price on milk in the country can only be found at The Warehouse. Obviously.
13: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिल्डकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ, विजिट बिल्डकैट्स.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर.

0: Yo. Radio Pub.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, bula aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein jiska naam hai Radio Pub. अभी भाई अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं जी हाँ उनको एक्स्ट्रा आर करना पड़ा बट एक्चुअली ही सेड दैट ही एंजॉयड एंड ही लव्ड इट एंड ऑफ कोर्स अभी दुबई एक्सपो भी आपने सुना ही होगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहा यार आई बीन मैं वहाँ पे गया था अभी थोड़ी देर पहले बट ऑब्वियसली ज़्यादा रुक नहीं पाया बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स यहाँ पे भी आना था मुझे बट काफ़ी अमेजिंग था तो अगर आपको भी चांस मिलता है फील फ्री टू गो देयर इन्फॉर्मेशन तो अभी भाई ने दे ही दी होगी आपको अभी भाई एंड कशिकत जी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन आप बस बने रहिए मैं हूँ 6 बजे तक ये मेरा दूसरा लगातार हफ्ता है एंड एक्चुअली आई टोल्ड देम यू नो अगर कभी वीकेंड पे भी हो तो प्लीज़ गिव मी द चांस यहाँ पे यू नो आई लव डूइंग द शोज यार आई लव टॉकिंग टू यू गाइज मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब आप रिस्पॉन्स करते हैं यहाँ पे कॉल्स करते हैं उसके लिए मतलब बहुत ही मज़ा आता है एंड ऑफकोर्स गाने प्ले करते करते कभी लगता है कि यार अपनी डीजे बट यस कुछ गाने मैं चला नहीं पाता हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी लाइब्रेरी में 100% गाने तो नहीं है बट जो है हम कोशिश करते हैं कि वो चले आप रिक्वेस्ट भी हमें भेजते हैं तो यस ऐसे ही बरकरार रखिए प्यार और दुलार आपका चाहिदा कीर्तन हाजिर है यहाँ पे अभी से लेके करीबन 6 बजे तक रेडियो पब सैटरडे इट इज़ क्या प्लान है आपके बताइए मुझे 555 पे

वेलकम बैक। चलिए रेडियो पब का पहला न्यूज पढ़ लेते हैं इस हार का, और काफी इंटरेस्टिंग खबर है ये, न्यूजीलैंड के मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जहां पब्लिक टॉयलेट्स अब कंप्लीटली फ्री नहीं रह सकते। भाई इंटरेस्टिंग तो है ही है, बट क्यों भाई, क्यों? वेल, मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ पॉपुलर टूरिस्ट एरियाज में टॉयलेट यूज करने के लिए स्मॉल फी इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं। मैकेंजी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कुछ पॉपुलर टूरिस्ट एरियाज में टॉयलेट यूज करने के लिए स्मॉल फी जो है वो इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। इनका मेन रीजन है मेंटेनेंस या हाई कॉस्ट। डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक टॉयलेट्स को साल में अराउंड 900,000 जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन इन फैसिलिटीज को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट भी हो जाता है, और अराउंड ऑलमोस्ट 800,000 पर ईयर। इसके कंपैरिजन में टॉयलेट से रेवेन्यू सिर्फ अराउंड 80,000 ही आता है। प्रपोजल के अकॉर्डिंग फेयरली बुक्स पास टेकअपू और ट्विजल जैसे बिजी एरियाज में कुछ पब्लिक टॉयलेट्स पेड हो सकते हैं, लेकिन लेक पोकाकी में भी एक पायलट प्रोग्राम टेस्ट किया जा सकता है, जिससे काउंसिल देख सकती है कि विजिटर्स पेड टॉयलेट्स को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। हाउएवर, हर पब्लिक टॉयलेट पेड नहीं होगा। कुछ लोकेशंस जैसे लेक ओपुहा, एडवर्ड स्ट्रीम और पुकाकी कैनाल फ्री रहने का प्रपोजल है। ऑलरेडी कुछ मैकेंजी टॉयलेट्स में पेमेंट सिस्टम है, जहां इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए $1.5 का कैश और कैश के लिए $2 चार्ज किया जा रहा है। काउंसिल का कहना है कि टूरिज्म की वजह से पब्लिक टॉयलेट का यूज़ काफ़ी हाई है, और उनका कॉस्ट जो है लोकल रेट पेयर्स पर पड़ रहा है, इसीलिए काउंसिल विजिटर्स को भी मेंटेनेंस कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं। काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स और डोनेशन सिस्टम को भी इंकरेज कर रहे हैं, ताकि कैश हैंडलिंग के साथ थेफ्ट और वेंडलिज्म जैसे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सके। एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया यार, मतलब ऑब्वियसली बाकियों की जेब से खर्चा हो, आई मीन गवर्नमेंट की जेब से हो, तो उससे बेटर है कि यू नो पीपल हु आर विजिटिंग। एंड ऑनेस्टली $1.5 to $2 इज नथिंग कंपेयर टू हाउ मच यू गोना स्पेंड आउटसाइड फॉर फूड, फॉर अदर एक्टिविटीज एंड फॉर स्टेइंग, फॉर ट्रैवलिंग। सो आई फील इट्स गुड। व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए?

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना हो।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: फाइन सिर्फ रोवा पर।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL। T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
4: Bunnings Rewards is a more rewarding way to shop. Every time you shop in-store at Bunnings, you can earn points on every dollar spent and give community groups a helping hand. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today and show your manaaki.
5: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
6: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे बम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन्स.co.nz।

भाई साहब, ये तो एक्चुअली मुझे लंच बॉक्स में जो टेक वाली जो इन्फॉर्मेशन होती वहां पे जरूर बोलना चाहिए था, बट यस मुझसे रहा नहीं गया यार. लाइक आई एम जस्ट गोना शेयर इट विद यू नाउ. मेटा यानी कि फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग ने एक अपना लेटेस्ट नॉट द फर्स्ट टाइम बट द लेटेस्ट VR ग्लासेस अनाउंस किए हैं. आई एम प्रीटी श्योर VR ग्लासेस आप सभी को पता ही होगा, लाइक यू नो यू नीड टू होल्ड यू नो सर पे बांधना पड़ता है, दो लेस होती है साइड और यू नो ऐसे, एंड सामने एक बड़ा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर इनिशियली ओल्ड स्कूल के हिसाब से फ़ोन डाले जाते थे और फिर उसके जरिए हम देख सकते थे. बट नाउ आई थिंक द वेरी गुड वन वॉज सैमसंग वन आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अभी मेटा ने भी कर दिया है. वेल नई चीज़ क्या है अभी आगे बताऊंगा. ये पहली बार उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, बट इस चीज में क्या खास है और मैं क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं वो इसलिए बिकॉज सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की. ये ग्लासेस ट्रेडिशनल VR हेडसेट की तरह बिल्कुल नहीं है. इनका वेट एनी गेसेस, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं. सो जस्ट टू टेल यू जो एप्पल का आई थिंक व्हाट VR विजन प्रो जो है वो अराउंड 800 to 900 ग्राम का है. अगर आपने देखा होगा, ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में तो लॉन्च नहीं हुआ है. उसके अलावा जो दूसरे भी थे दोज आर ऑल्सो 300 to 400 ग्राम्स. खुद मेटा का ही 300 to 400 ग्राम्स का है. लेकिन ये गेस करो, मैं आपके पास 10 नहीं है, 10 बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कुछ भी गेस करो और मन में सोचो. मैं 5 तक गिनती करता हूँ. 5 4 3 2 1. वेल ऑब्वियसली जवाब तो यू नो यू नीड टू फिगर आउट कि वो सही हुआ नहीं हुआ. आई मीन आप ही को जज करना है खुद को. वेल एक्चुअली इट इज जस्ट 100 ग्राम्स. मतलब समझ रहे हो, 100 ग्राम्स. एक चम्मच की जो वेट होती है वो ऑन एन एवरेज आई थिंक 20-25 ग्राम्स होती है, यानी कि 4 चम्मच की साइज का के वेट का ये ग्लासेस है. और इसलिए मेटा का जो फोकस है वो यही था, एक लाइटर और मोर कंफर्टेबल एक्सपीरियंस लेने का. यानी कि जो बाकी के जो VR थे, यू कैन नॉट जस्ट गो अराउंड, यू नीड टू सिट डाउन प्रॉपरली, यू नीड टू वर्क लाइक भाई मैं एक्चुअली कुछ कर रहा हूँ. इट्स लाइक होल्डिंग अ लैपटॉप एंड रनिंग ऑन द रोड, समथिंग लाइक दैट. यू कुडंट हैव इमेजिन बिफोर, बट फाइनली ये इस VR ग्लासेस से पॉसिबल है. ये ग्लासेस स्प्रिंग 2027 में लॉन्च होने वाला है, यानी कि अगले साल. और US में इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 1299.99, यानी कि $1300 USD मान लो. अब टेक्नोलॉजी की बात करें तो ग्लासेस में करीबन 5K इनफाइनाइट डिस्प्ले, माइक्रो ओलेड स्क्रीन और डॉल्बी विजन सपोर्ट दिया गया है. मतलब मूवीज और अदर कंटेंट को एक लार्ज वर्चुअल स्क्रीन पर देखने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है इसको. इस डिवाइस का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका कंट्रोल सिस्टम. आपको ट्रेडिशनल कंट्रोलर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. आईज, हैंड गेस्चर्स और वॉइस कमांड्स के थ्रू आप एप्स कंट्रोल कर सकेंगे. AI भी इस एक्सपीरियंस को काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप नेचुरल वॉइस कमांड्स देकर डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, जबकि हैंड गेस्चर्स से मेनस और वर्चुअल स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है. एंटरटेनमेंट के अलावा मेटा इस वर्क के लिए अभी उसे यूज करना चाहते हैं. आप मल्टीपल वर्चुअल स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं. ये चीज़ मुझे बहुत खास लगी अपने मैक या फिर विंडोज PC के ग्लासेस के कनेक्ट करके. सो what good thing was, for example, आपके पास लैपटॉप है छोटा सा, so you just need to wear the VR glasses and अगर आप उसको properly अच्छे से कनेक्ट कर लिया तो आपके पास मल्टी स्क्रीन हो सकती है. दैट मीन्स यू कैन डू मल्टी टास्क विदाउट मिनिमाइजिंग एनी ऑफ द स्क्रीन. और ये सारी फ्लोटिंग स्क्रीन्स होगी, लाइक इट विल नॉट गोइंग टू बी लाइक प्रॉपर वाली स्क्रीन, ऐसा नहीं. दैट मीन्स नाउ कंप्यूटर पर अगर आप काम कर रहे हैं आपको दो दो तीन तीन स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज द ग्लासेस विच इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट. बट यस, अभी ऑब्वियसली उन्होंने से लॉन्च किया है बट इट इज नॉट आउट फॉर द मार्केट येट. सो यस, जैसे ही लॉन्च होता है मार्केट में पब्लिक के हाथ में आता है और मे बी टेस्टिंग आउट के लिए, नॉट ऑब्वियसली स्प्रिंग में आएगा आम लोगों के पास, बट उससे पहले होपफुली यार ये चीज़ होगी. आई एम वेरी एक्साइटेड और काफ़ी टाइम से मुझे इस चीज़ का काफ़ी विश थी कि यार कब ऐसी कोई चीज़ आएगी जो हम खरीद सकें, जो अफोर्डेबल हो और साथ में कंपैटिबल भी हो, एंड देन यू कैन वेयर इट ऑलमोस्ट ऑल डे लाइक दैट. सो फाइनली ये चीज़ आ चुकी है, देखते हैं यार. अमेजिंग यार, इवन द लुक इज अमेजिंग. यू कैन एक्चुअली गो आउट फॉर अ फैशन एज वेल, बिकॉज वो बाकी के ग्लासेस के साथ ही रखा होगा एंड यू विल हार्डली गेट टू नो कि सचमुच
यही है वो।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पब। मेरा नाम केतन है और क्विक अपडेट, अगर आप यू नो इफ यू आर ऑलरेडी आउट, आई वुड हाईली रिकमेंड आप पहुंच जाइए बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 जो कि आ चुका है यहाँ पे ऑकलैंड में, और आज और कल ही होने वाला है। और अगर आपने सुना है हमें पहले से ही, सो वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड बाय कशिका एंड अवी ओवर हियर फ्रॉम द स्टूडियो रिगार्डिंग दे वर देयर एंड व्हाट एन अमेजिंग अमेजिंग इवेंट यार। अगर आप सचमुच कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं दुबई के शहर में, सो यस, दिस इज़ वेरी हाई टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स गोना वर्क आउट, और कैसे आप वहाँ की प्रॉपर्टी के अंदर जो मार्केट है वो वहाँ पे घुस सकते हैं। सो यस, अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं और हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हैं, तो यस आज और कल पहुंच जाइए करीबन सुबह 10 से लेकर 8 बजे के बीच JW मैरिट ऑकलैंड। यहां आप डायरेक्टली दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर्स के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ क्वालिफाइंग सेलेक्टेड यूनिट्स पर 0% अपफ्रंट DLD भी फीस है, फ्लेक्सिबल डिफर्ड पेमेंट प्लान्स भी हैं और प्रोजेक्टेड रिटर्न्स भी हैं अप टू 20% ROI, इस तरह के ऑफर्स भी हैं वहाँ पे। चाहे आप दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना चाहते हो, तो यस, 1-to-1 कंसल्टेशन के थ्रू आप अपने इस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। सो यस, हम टीम जो थी वो थी वहाँ पे, एंड आप JW मेरिट ऑकलैंड पर मिलना ना भूलें। हो सकता है वो वहाँ पे हो अभी भी, सो यू जस्ट गो एंड चेक आउट। बट यस, अपनी 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करने के लिए आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट BillCaps.com विजिट करें, या फिर डायरेक्टली उस इवेंट में वॉक इन करें और वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो यस, दुबई प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटीज राइट हियर इन ऑकलैंड, मिलते हैं वहाँ पे।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox. Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
1: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brand, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
2: Hey, City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
3: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
4: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
5: See our first trip. Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
6: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
7: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
8: Freedom's Outdoor Furniture Flash Sale is on now. Get 30% off outdoor furniture and homewares. From outdoor lounges to outdoor cushions, save 30%. Hurry, sale ends Monday, only at Freedom.
9: The ultimate pro iPhone, iPhone 18 Pro. With a big leap in battery life, new 48 megapixel Fusion main camera with variable aperture for more creative control, and four gorgeous colors. Be the first to unbox it with a great deal at Spark. Plus, save even more with trade-in. Do more with iPhone 18 Pro on an eligible pay monthly mobile plan with Spark. Order online or in-store. Spark terms and credit criteria apply. Delivery times may vary.
10: It's double points week at Woolworths. Simply hit Boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online, and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. End Sunday. T's and exclusions apply.
11: Clocks are about to go forward, which means you're about to lose an hour's sleep. That's better than losing your life. Install smoke alarms where you sleep this daylight saving. This message is brought to you by Fire and Emergency New Zealand.
12: Know someone who may need support to enrol or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Celebrate Macca's 50th with the Meal Steal Combo for $17. That's a Big Mac, cheeseburger, fries, a soft drink, plus a birthday bonus from the warehouse or time zone. For a limited time, the Meal Steal Combo. On now at Macca's. T's and C's apply.
14: The beat of Bollywood.
15: World's best. Hamari koi branch nahi hai. Yo.
16: Radio Pub. स्वागत करते हैं फिर से आपका रेडियो पॉप पे. चलिए मूवी रिव्यू देख लेते हैं यार. द विवान, विवान वान, बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार. लाइक बड़ा ऑब्वियसली कुछ तो मतलब होगा इसके पीछे. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म है, जो कि फिल्म के प्रीमाइस इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें डिवोशंस, माइथोलॉजी, हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिक्स किया गया है. स्टोरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर ऋषि मुंबई में अपने वाइफ ममता के साथ रहते हैं. सालों से वो अपने होम टाउन देवांचल नहीं गए, लेकिन इस बार वो वापस आते हैं. विलेज के पास एक फॉरेस्ट है जहां लोग सनसेट के बाद जाना अवॉइड करते हैं. उनका मानना है कि जंगल में वन देवी क्योंकि डबल ए दिखा रहा है मुझे. वन देवी का वास जो है वहां पे होता है, वहां जाना काफी डेंजरस हो सकता है. ऋषि ने इन बिलीफ को सुपरस्टिशियस मानते हैं. वो जंगल में जाते हैं और उसके बाद सिचुएशन जो है वो काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. यहीं से फिल्म को हॉरर और माइथोलॉजी के एंगल से शुरुआत करते हैं. फिल्म की स्टोरी में पोटेंशियल काफी है. कुछ माइथोलॉजी एलिमेंट्स भी जेन्युइनली इंट्रीगिंग है, जैसे कि सनसेट के बाद लोगों का ब्लाइंड फोल्ड होकर फॉरेस्ट में जाना और जंगल में सुपरनैचुरल क्रिएचर्स का हैवॉक क्रिएट करना. कॉमेडी के बाद कॉमेडी की अगर बात करें तो मनीष पॉल के सीन्स में काफी देसी और टीवीएफ स्टाइल ह्यूमर का फ्लेवर मिलता है। कुछ डायलॉग्स और पॉप कल्चर रेफरेंसेस भी काफी एंटरटेनिंग है इसमें। परफॉर्मेंस में सिद्धार्थ मल्होत्रा डिसेंट है और एक्शन सीक्वेंस में कन्विंसिंग लगते हैं। तमन्ना भाटिया के रोल में काफी इंपॉर्टेंट है और वो डिपेंडेबल परफॉर्मेंस देती है। उनका छाती मैया सॉन्ग में अपीयरेंस पर्टिकुलर नोटिसेबल है। मनीष पॉल कॉमेडी में लाफ क्रिएट करते हैं वाइल सुनील ग्रोवर भी सिंसियर परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि वो भी इस फिल्म में है, ये मुझे अभी अभी पता पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ से शुरू होती है, स्क्रीन प्ले में आती है। रिव्यू के अकॉर्डिंग स्पेशली सेकेंड हाफ मेसी हो जाता है, विलन ट्रैक वीक लगता है और कुछ डेवलपमेंट लॉजिकल नहीं लगते और क्लाइमेक्स भी एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। सो टेक्निकल साइड पर सिनेमेटोग्राफी स्ट्रॉन्ग है, फॉरेस्ट और नाइट सीक्वेंस विजुअल क्लियर है और एक्शंस भी रियलिस्टिक फील होते हैं, लेकिन VFX और कुछ एनिमेशंस एलिमेंट्स उतने इम्प्रेसिव नहीं है। सो ओवरऑल द विवान का कॉन्सेप्ट प्रॉमिसिंग है, लेकिन स्क्रीन प्ले, विलन ट्रैक और क्लाइमेक्स की वजह से फिल्म का इंपैक्ट जो है वो काफी कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट। वेल यस, ये तो खैर रिव्यू आया है बाय बॉलीवुड हंगामा, जिन्होंने काफी कम इनको रेटिंग दी है, 2 out of 5। बट एज आई ऑलवेज से, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स रिव्यू, क्योंकि हर एक का प्रोस्पेक्टिव जो है अलग होता है। कुछ फिल्में उनको पसंद नहीं आती होगी, कुछ फिल्में आपको पसंद आती होगी, जो आपको आती होगी वो उनको नहीं आती होगी, या फिर सबको जो आती होगी किसी को तो नहीं आती होगी। सो यस, हर एक इंसान का जो देखने का नजरिया वो अलग होता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप खुद जाएं, मूवी देखें एंड देन डिसाइड करें, रादर देन यू नो डिपेंड रहना उन लोगों पे जो सचमुच रिव्यू देते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका जो स्टाइल शायद हो सकता है अलग हो, एंड दैट्स व्हाट आई आल्सो बिलीव, और उसी बेस पे मैं देखता हूं। तो मेजॉरिटी केसेस ये होते हैं कि मुझे कुछ कुछ फिल्में इतनी ज़्यादा पसंद आती है जो सचमुच इतनी लो रेटिंग की होती है, और कुछ कुछ फिल्में यू नो बिकॉज मेरा देखने का नजरिया अलग है, आई डोंट जज जस्ट बेस्ड ऑन दीज फ्यू थिंग्स। सो यप, आई वुड हाईली रिकमेंड, जाइए थिएटर में और देखें और फिर मुझे बताइए 5599 पे। अभी नॉट नाउ ऑब्वियसली, एक मिनट की नहीं है, 2-3 घंटे लगेंगे, अगले शो में बता देना।

0: वेल ये रहा मेरा सवाल, काफी इजी है बट काफी इंटरेस्टिंग भी, और वो ये है कि न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। आप मुझे इसका जवाब भेजिए 5599 पे। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। यस, सो यस, फोन उठाइए और मुझे भेज दीजिए। बिफोर गूगलिंग इट, व्हाट इज अ मेजर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट न्यूजीलैंड डज ओवर हियर। जी हाँ, 5599 इज द नंबर।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.9

वेलकम बैक। वेल, ये रहा मेरा जवाब। काफी लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया है, दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट। अब न्यूजीलैंड में रह रहे हो तो इतना तो पता होना बनता है। वेल, न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट होता है वो होता है डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क पाउडर, बटर एंड चीज। और लार्जेस्ट इंपोर्ट जो होता है उसकी कैटेगरी में मशीनरी एंड पेट्रोलियम आते हैं, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। टॉप एक्सपोर्ट की अगर बात

करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क पाउडर, बटर, चीज फ्रॉम न्यूजीलैंड्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट है, जो कि करीबन 24 बिलियन हर साल जनरेट करता है। उसके बाद मीट एंड एडिबल ऑफल भी है, बीफ एंड लैम्ब आर द सेकंड लार्जेस्ट गुड एक्सपोर्ट्स एंड यस मीट एंड एडिबल ऑफल बीफ एंड लैम्ब आर द सेकंड एज आई सेड। फ्रूट्स भी है जैसे कि कीवी फ्रूट हो गए, एप्पल ड्राइव, मेजर हॉर्टिकल्चर रिटर्न्स, साथ में लॉग्स एंड वुड्स भी, रॉ लॉग्स, सॉन टिम्बर एंड वुड पल्प, ये भी काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है। इम्पोर्ट की अगर बात करें तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद पेट्रोलियम एंड ऑयल भी है, रिफाइनिंग एंड क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, एंड व्हीकल, कार पार्ट्स एंड एसेसरीज ये भी यहाँ से होता है। मेन ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ के न्यूजीलैंड के हैं, चाइना इज द न्यूजीलैंड्स टॉप डेस्टिनेशन फॉर एक्सपोर्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इम्पोर्ट, बट यस ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी इस लाइन में है, जो कि सेकेंड एंड थर्ड आते हैं आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: your home, Harrington Living Manukau.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
3: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
2: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
4: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 80 years.
5: Hey, how's it going?
6: Yeah, good, good. You?
5: Yeah, good. Okay, I've got a question for you. Have you heard of Thomason Does Advertising?
6: No, I don't think so. What do they do?
5: Starts with A.
6: Oh, okay, advertising. I get it. But you know that I hate advertising.
5: No. They do the good ones. I know you like the good ones.
6: Okay, yes, I'll give you that. I do like the good ones.
5: And you'll know most of them too.
6: Really?
5: Well, you're in one right now. One of these.

वेलकम बैक। चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के हेल्थ केयर सेक्टर से एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। हेल्थ न्यूजीलैंड इस फाइनेंशियल ईयर में 380 नए फ्रंटलाइन हेल्थ केयर रोल्स ऐड करने जा रही है। इनमें नर्सेज है, मिडवाइफ्स और हेल्थ केयर असिस्टेंट की पोजीशन भी शामिल है। न्यू रोल्स में करीबन 149 साउथ आइलैंड, 120 नॉर्थ रीजन और 76 सेंट्रल और 32 मिडलैंड रीजन में ऐड किए जाएंगे। लेकिन सिर्फ न्यू स्टाफ हायर करना ही उनका फोकस नहीं है। हेल्थ न्यूजीलैंड अब नर्स को पेशेंट रेशियो को भी सीरियस कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक नर्स के पास मैक्सिमम कितने पेशेंट्स होने चाहिए उसके लिए फिक्स रेशियो सेट किया जा सकता है। एक पॉसिबल मॉडल में एक नर्स के लिए 4 पेशेंट्स का रेशियो कंसिडर किया जा रहा है। हाउएवर अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है। हेल्थ न्यूजीलैंड इस प्रपोजल पर एक डिटेल्ड बिजनेस केस प्रिपेयर कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेड है। मीनवाइल विंटर प्रेशर को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 94 एडिशनल पोजीशंस भी ऐड की जा रही है जिसमें मेजॉरिटी नर्सेज रोल्स हैं। हेल्थ न्यूजीलैंड का कहना है कि हर हेल्थ केयर सर्विस के की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, इसीलिए एक सिंगल स्टाफिंग मॉडल हर जगह सुइटेबल नहीं होगा। सो यस, ओवरऑल की अगर बात करें तो फोकस अभी मोर फ्रंटलाइन स्टाफ, बेटर स्टाफिंग सिस्टम और सेफ नर्स को नर्स टू पेशेंट वर्कलोड्स पर है।

वेलकम बैक। वेल आज की डेट यानी 26 सितंबर को क्या हुआ था, 1865 की बात है जब न्यूजीलैंड हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट बात हुई थी। इसी दिन नेटिव राइट्स एक्ट के थ्रू माओरी पीपल को ऑफिशियल नेचुरल बॉर्न ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के स्टेटस की लीगल कंफर्मेशन दी गई थी। ऐसा कनेक्शन ट्रीटी ऑफ वाइटांगी से था। ट्रीटी के आर्टिकल 3 में माओरी को ब्रिटिश सब्जेक्ट के सामने सेम राइट्स और प्रिविलेजेस देने का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन बाद में माओरी लैंड ओनरशिप और ट्रेडिशनल कम्युनल लैंड टेन्योर को लेकर काफी क्वेश्चन रेज होने लगे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स में माओरी को इस बेसिस पर ब्रिटिश सब्जेक्ट स्टेटस से चैलेंज किया गया, और इसी बैकग्राउंड में नेटिव राइट्स एक्ट 1865 ने लॉ में क्लैरिफाई किया कि माओरी को क्राउन के नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट्स माना जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ये एक्ट माओरी के लीगल स्टेटस को फॉर्मली कंफर्म करने वाला काफी बढ़िया स्टेप था। आज जब न्यूजीलैंड में ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और माओरी क्राउन रिलेशनशिप की हिस्ट्री डिस्कस होती है तो 1865 का ये एक्ट भी एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन माना जाता है।

0: फ्री डे ड्राइविंग के लिए स्मार्टर चॉइस विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन और पुकेकोई और winger.co.nz ऑफर एंड सितंबर 30th.
1: It's the final days of Big Save's big spring sale. We need to clear $20 million worth of sofas, recliners, beds, bunks, sofa beds, dining and bedroom furniture. Get 50% off selected sofas, yes, 50% off. King beds from only $999 and get two recliners for only $699. Plus, 36 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply, only at Big Save.
2: Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
3: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
4: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at The Warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
5: Auckland, time's running out to make your emergency plan this daylight saving weekend. What would you do if extreme heat caused a power outage? How would you get home if the bridge is closed in a storm? If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
7: Kabhi bhi, kahin bhi.
8: Yo.
7: Radio Pop.
8: वेल यस फटाफट से कुछ अनाउंसमेंट दे देता हूँ यहाँ पे. आप इस हफ्ते आपने सुना होगा टेस्ट ड्राइव में सैंडी एंड रुजबे उन्होंने उनको ज्वाइन किया था नवतेज रंधावा ने जो कि एक कैंपेन मैनेजर है फॉर नेशनल पार्टी इन मनरेवा एंड ओटाहूहू. काफ़ी ओपन कन्वर्जेशन हुई है उनकी हमारे साथ इश्यूज अफेक्टिंग न्यूजीलैंड कम्युनिटीज. एंड उन्होंने ये भी बात की है अबाउट इमिग्रेशन हेल्थ केयर स्टाफिंग प्रेशर ऑन द फ्रंटलाइन हेल्थ सिस्टम. ये सारी बातें उन्होंने की है. एंड यस उनका प्रस्पेक्टिव जानने के लिए उनका क्या चैलेंज है जो फेस हो रही है उस पर क्या सोल्यूशन है प्लस फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आप ड्राइव लिखिए और 5599 पर मुझे भेज दीजिए ताकि फुल एपिसोड आपको आपके फ़ोन तक पहुँच जाए. उसके बाद ब्रेकफास्ट कैचअप में भी व्हाट डज सक्सेस एक्चुअल मीन बियॉन्ड द डेप्थ. अगर एक आपके अगर लोन है या कुछ डेप्थ है तो उसके बाद व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन. विजय पूजा ने काफ़ी क्लोजली डिस्कशन किया है अबाउट सक्सेस फ्रॉम बाइंग अ होम एंड मैनेजिंग अ मॉर्गेज टू मैरिज करियर एंड फीलिंग सेटल्ड. इस टॉपिक पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात की है. काफ़ी ट्रेडिशनल चेकलिस्ट जो है उसको भी डन किया है. इस फुल कन्वर्सेशन को अगर आप चाहते हैं सुनना तो आप मुझे BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए फुल ऑडियो के लिए.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पब। वेल यस, ये रहा मेरा सवाल और वो ये है कि आज बेसिकली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है अर्चना पूरन सिंह एंड साथ में चंकी पांडे भी। दोनों आज के दिन पैदा हुए थे और दोनों एक्चुअली सेम ईयर भी पैदा हुए थे। दोनों 64 साल अपने पूरे कर चुके हैं, टर्निंग 64 ईयर्स ओल्ड। बट यस, अर्चना पूरन सिंह इज डूइंग सो ग्रेट यार। अभी तो लेटेस्ट द लेटेंट में भी आई थी, इंडियाज गॉट लेटेंट, और कपिल शर्मा में तो आती है, बट पता नहीं, आई थिंक नया सीजन भी आने वाला है कपिल शर्मा का। बट यस, माय क्वेश्चन इज, अर्चना पूरन सिंह की वो कौन सी फिल्म है जिसमें उनके बॉयफ्रेंड बोले या फिर एक क्रश होते हैं अनुपम खेर, जो उन पे फिदा होते हैं। सो यस, ये कौन सी फिल्म है जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने रोल निभाया है और उन पे अनुपम खेर बहुत ही ज्यादा फिदा होते हैं। सो यस, 5599 नंबर जहां पे आप मुझे जवाब भेजें।
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
2: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
3: The Specsavers Specstraver Gains are store-wide sale is on now. Phew, bit of a tongue twister, hey? Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
4: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Save a very relaxing $800 on a stylish Catalonia outdoor corner lounge setting, now $2,699. And never get chilly with 15% off all Kent outdoor heaters. Mitre 10, your home for outdoor living.
5: This is Warehouse Country, where on your way home from work, school or wherever, you can top up on eggs, nature's fresh bread and milk at the best price in the country. From, well, the warehouse.
6: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: Radio Pub.
1: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पब और मेरा नाम केतन है। मैं यहाँ पे 1 बजे से था और अभी मैं 6 बजे तक हूँ यहाँ पे। सो यस, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू हैविंग अ गुड टाइम, जस्ट थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और एन्जॉय करिए आज का शो। बट यस, अगर आप ने सुना होगा मॉर्निंग में, तो यस कशिका जी इवेंट में गई थी दुबई एक्सपो में। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है, किस तरह की क्लासेस हो रही है वहाँ पे, एज इन टर्म्स ऑफ एग्जीबिशंस, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी बातें बताइए। तो अगर और आप जाना चाहते हैं तो कल भी ये होने वाला है, सो मेक श्योर आप यहीं पर रहें। बट यस,

मैंने एक सवाल किया था आप सभी से कि कौन सी वो फिल्म है जिसमें अर्चना पूरन सिंह ने एक किरदार निभाया था जिस पे लट्टू थे अनुपम खेर, ऑब्वियसली किरदार में, ऐसा रियलिटी में नहीं। सो यस, सभी ने सही जवाब दिया है। मूवी का नाम है कुछ कुछ होता है। वेल, मैं सिर्फ 6 साल का था जब ये फिल्म आई थी और फैमिली ड्रामा है, रोमांस है और 3 घंटे 5 मिनट की ये फिल्म थी तब की, और मेरे ख्याल से तब तो रहते भी थी इतनी लंबी लंबी फिल्में, सो पीपल नॉट यूज टू कंसिडर इट एज वेरी वेरी लॉन्ग फिल्म है, और तब तो एक्चुअली टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था फिल्म को बनने में। बट व्हाट अ मूवी यार, अमेजिंग मूवी, अगर आज भी देखेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कोई भी बोर नहीं होगा। बट आई एम जस्ट लुकिंग एट द रेटिंग, रेटिंग कोई खास नहीं मिली यार, आई मीन 7.5, 7.5, 71 लाइक ये मिले हैं रेटिंग्स, 7.1 सॉरी। करण जौहर ने ये डायरेक्ट की थी, 1998 में रिलीज हुई थी 16 अक्टूबर को, यानी कि अभी मेरे ख्याल से व्हाट 28 ईयर्स ही हो ना, हाँ 28 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उसके बाद प्रोड्यूसर है यश जौहर, जो कि करण जौहर के आई थिंक सिबलिंग है, पापा है, क्या है, मेरे ख्याल से पापा ही होंगे, यस। एंड उसके बाद म्यूजिक जो है वो जतिन ललित, ललित पंडित और जतिन पंडित ने कंपोज किया है। अमेजिंग मूवी यार, अमेजिंग मूवी। और वो एक्चुअली टीचर का रोल निभाते हैं, अर्चना पूरन सिंह एंड अनुपम खेर, वो टीचर होते हैं वहाँ के स्कूल के। बट यस, व्हाट अ मूवी यार।

0: भी था.
1: Shirley Setia Unfiltered. Catch the full conversation with Sandy and Rusbe coming soon.
2: Unfiltered with Sandy and Rusbe on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
4: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
7: हेलो एवरीबॉडी.
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम.
9: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी. तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए. क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
10: Hey, how's it going?
11: Yeah, good, good. You?
10: Yeah, good. Okay, I've got a question for you. Have you heard of Thomason Does Advertising?
11: No, I don't think so. What do they do?
10: Starts with A.
11: Oh, okay, advertising. I get it. But you know that I hate advertising.
10: No, no, no, no. They do the good ones. I know you like the good ones.
11: Okay, yes, I'll give you that. I do like the good ones.
10: And you'll know most of them too.
11: Really?
10: Well, you're in one right now. One of these.
11: What?
12: Thomason Does Advertising.

0: $1,000 cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
2: The Specsavers Specstraver Gains are store-wide sale is on now.
3: Phew, bit of a tongue twister, hey?
2: Get any two pairs of glasses store-wide, even designers, for only $299. Save up to $200. Hurry, offer ends October 3. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
4: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Permission. Can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
5: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
6: Yeah.
5: Hum.
6: Teri base hai faadu. Meri highs ke liye.
5: Hum. Radio Pub.
7: वेलकम बैक। क्वींसटाउन के कॉर्नेट पीक एरिया से एक वुमेन के मिसिंग होने की बात सर्च ऑपरेटिंग ऑनगोइंग है। 47-year-old एरिका रॉड्रिगस जो ब्राजीलियन नेशनल है और उनको लास्ट टाइम फ्राइडे सितंबर 18 को देखा गया था। उन्हें उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस को सितंबर 20 को दी गई। पुलिस और वॉलंटियर्स ने उन्हें ढूंढने के लिए एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसमें लैंड सर्च और रेस्क्यू वॉलंटियर्स, कोस्ट गार्ड, क्वींसटाउन ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। पुलिस ने एरिका की कार रेंटल एक वाइट टोयोटा रॉव RAV4 को सितंबर 21 को स्किपर सैडल कॉर्नेट पीक के पास लोकेट किया। सर्च टीम्स ने शॉट ओवर डेविल्स क्रीक और नियर बाय कैचमेंट्स के साथ साथ उन पॉसिबल रूट्स को भी चेक किया जहां से एरिका ट्रैवल कर सकती थी। कोस्ट गार्ड का अंडर वाटर ड्रोन भी एक नियर बाय माउंटेन टर्न में सर्च किया है, सर्च के लिए लिया गया है। और पुलिस के अकॉर्डिंग एरिका को लास्ट टाइम ब्लैक हैट, 10 ब्राउन पफर जैकेट, ब्लैक टाइट्स और हाइकिंग बूट्स पहने देखा गया था। पुलिस पब्लिक से अपील कर रही है कि अगर किसी ने एरिका को सितंबर 18 के बाद देखा है या उनकी वाइट टोयोटा RAV4 को उस दिन या उससे पहले देखा हो तो आप 105 पर पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर एरिका की कोई करंट साइटिंग होती है तो इमीडिएटली 111 पर कॉल करके आप उन्हें बता दीजिए।
8: Gully gang, water, water.

एक मैसेज पढ़ लेता हूँ यहाँ पे. इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स, जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342, 0800-862-342 for free and confidential mental health support. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or emergency services.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: All right, Pepper, now we're going to do a radio ad.
6: Can't you just use my line from the TV ad?
5: Well, let's just do it again, please, Pepper.
6: Phone dollars are for phones. Obviously?
5: Yeah, okay, another one, but without the obviously.
6: Phone dollars are for phones. Ring, ring, ka-ching. Obviously.
5: Q's and C's.
6: Eligibility and T's and C's apply. For more info, visit 1NZ/1Wallet.
5: Cool, and the end bit.
6: One New Zealand. Let's get connected.

रेडियो पब। वेलकम बैक। ये रही अभी की लेटेस्ट स्पोर्ट्स खबर, वो ये है कि न्यूजीलैंड गोल्फर रायन फॉक्स का प्रेसिडेंट कप डेब्यूट मेरिना शिकागो में हुआ, लेकिन ओपनिंग सेशन उनके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहा। फॉक्स ने ऑस्ट्रेलियन वेटरन एडम स्कॉट के साथ फोर बॉल मैच खेली, जहां उनका सामना अमेरिकन विंडम क्लार्क और कॉलिन मोरिकावा से हुआ। इंटरनेशनल प्लेयर से कुछ अच्छे मोमेंट्स भी दिखाए। फॉक्स ने 7 होल पर बर्दी करके एक पॉइंट विन भी किया था, लेकिन अमेरिकन ने अर्ली लीड बना ली और मैच को थ्री एंड टू से जीत लिया। ओवरऑल ओपनिंग सेशन में यूएसए ने इंटरनेशनल्स को 3-2 से लीड किया और इंटरनेशनल टीम्स के लिए हाइडेकी मत्सुयामा रियो हिसात्सुने और टॉम किम ने अपने मैचेस जीते। अब रायन फॉक्स के पास कमबैक के चांस कम है। डे टू में फॉक्स मिनवू ली के साथ फोरसम्स यानी ऑल्टरनेट शॉट फॉर्मेट में कॉलिन मोरिकावा और विंडम क्लार्क का सामना करेंगे।

0: Well, देखिए सेलिब्रिटी बर्थडे अगर मना ही रहे हैं तो ये मेरा एक सवाल है आप सभी से, और वो ये है कि चंकी पांडे, उनका बर्थडे भी है आज, तो यस टू सेलिब्रेट आई एम जस्ट गोना आस्क क्वेश्चन हियर कि चंकी पांडे की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी। आप मुझे इसका जवाब दीजिए 5599 पे।
1: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
3: ये गलत बोल दिया यार।
2: और पहनता भी नहीं उसको।
3: अब उस बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी वो।
3: अभी ब्रांड हो गया ना।
2: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura J2.

अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। सेंट्रल ओटैगो से माइनिंग और एनवायरमेंट को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। गोल्ड माइनिंग कंपनी सेंटना मिनरल्स ने नेटिव लिजर्ड के प्रोटेक्शन के लिए $10 मिलियन का प्रपोजल रखा है। कंपनी के बेंडिगो ओफर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट टेरेस के पास प्रपोज्ड है, लेकिन माइनिंग से लोकल एनवायरमेंट और नेटिव वाइल्ड लाइफ पर इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है और कंसर्न भी जताया गया है। बट यस, एरिया में लार्ज नंबर में नेटिव लिजर्ड्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द कावराओ गेक्को जो सेंट्रल ओटैगो के ड्राई लैंडस्केप के पार्ट है। सेंटना मिनरल्स का कहना है कि प्रपोज $10 मिलियन कंजर्वेशन पैकेज के थ्रू लिजर्ड्स और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स फंड किए जा सकते हैं, लेकिन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का फोकस ये देखना है कि क्या ये कंजर्वेशन मेजर्स माइनिंग से होने वाले पोटेंशियल बायोडायवर्सिटी लॉस के जेन्युइनली कंपनसेट कर पाएंगे या फिर नहीं। सो यस, अब ये मेन इश्यू है कि सेंट्रल ओटैगो में गोल्ड माइनिंग और नेटिव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बिकॉज $10 मिलियन पैकेज इसी डिबेट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है।

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: just got fresher with these great deals at New World North Island this week. Get avocados, 2 for $2.50, or whole chicken legs, $7.99 per kilo. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

रेडियो पब। वेल, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ चंकी पांडे 1987 की फिल्म है, एक्शन ड्रामा आग ही आग। मुझे डायलॉग आता ना, आग ही आग, मैं बोल नहीं पाया वैसे, आग ही आग। ये शायद कोई धर्मेंद्र जी बोलते ना, ये डायलॉग किसी किसी फिल्म का है। एनीवेज, डायरेक्टेड बाय शिबू मित्रा एंड प्रोड्यूस बाय पहलाज नेहलानी। उन्होंने मल्टी स्टार कमर्शियल हिट दी है और कास्ट के हिसाब से अगर देखें तो नीलम कोठारी इस फिल्म में थी और ऑफिशियल लॉन्च भी काफ़ी यू नो 10 डिकेड्स लॉन्ग करियर इन इंडियन सिनेमा। जी हाँ, वैसे बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मैंने देखी है। थोड़ी बहुत मुझे याद है, अभी पूरी तो याद नहीं एग्जैक्टली, बट मुझे याद है कुछ ग्लिम्प्स की क्या क्या होता है। बट अमेजिंग यार, अमेजिंग। चंकी पांडे की एक फिल्म ये भी है जो मुझे याद है, जो गोविंदा के साथ होती है और इनका पांव फंस जाता है किसी, यू नो, वाइल रनिंग अवे फ्रॉम द विलन्स, उनका गटर में पांव फंस जाता है एंड देन गोविंदा आते हैं इनको बचाने, बट देन ही वाज लाइक नो नो नो, भाग भाग, आई बी फाइन, आई बी फाइन, ऐसा कुछ करके। बट देन आगे पीछे याद नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर मैंने ये भी फिल्म देखी है। आपने देखी है? अगर हाँ तो बताइए मुझे कैसी लगी।

वेल यस एवेंजर्स मार्वल के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं तो यस आपने डेफिनेटली ये मूवी तो देख ली होगी। अगर नहीं दिखी है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ दैट एवेंजर्स एंड गेम के एनकोर वर्जन में कुछ ऐसा एडिशनल सीन्स रिपोर्टेडली एड किया गया है जो एमसीयू के नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्ट किया गया है। स्पॉइलर अलर्ट, अगर आप एंड गेम एनकोर देखने वाले हैं तो यहां से स्पॉइलर है। वेल सबसे इंटरेस्टिंग चेंज स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का फाइनल डांस सीन में है। ओरिजिनल फिल्म में ये इमोशनल कैप्टन मोमेंट जो है वो कैप्टन अमेरिका की स्टोरी को क्लोज करता है, लेकिन एनकोर वर्जन में सीन को रिपोर्टेडली एक्सटेंड किया गया है पैगी के घर के डोर पर नॉक होते हुए और सामने लोकी नजर आता है। लोकी स्टीव को बताता है कि वो उनकी हेल्प करने आया है। इसके अलावा ब्रूस बैनर उन्होंने से भी जुड़े एक सीन भी काफी लोगों को इम्प्रेस आएगा, अच्छा लगेगा। बैनर एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी में होता है जहां डॉक्टर डूम की एंट्री होती है। डूम बैनर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं और हल्क के ट्रांसफॉर्म होने के बाद बैनर डिसअपियर हो जाता है। एक और मेजर एडिशन टीवीए और मल्टीवर्स क्राइसिस को लेकर है। टीवीए डिटेक्ट करते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन क्रिएटिंग अ पोटेंशियल थ्रेट टू द एंटायर मल्टीवर्स। और एंडिंग में सबसे बड़ा क्लू हो मिलता है ओरिजिनल एंड गेम के एंड ओरिजिनल एंड गेम के एंड में सुनाई देने वाली फेमिलियर हैमरिंग साउंड को रिपोर्टली एक न्यू विजुअल के साथ पेयर किया गया है। एक मिस्टीरियस फिगर फॉर्ज पर कुछ बना रहा होता है और रिवील होता है कि वो डॉक्टर डूम का मास्क है। अगर रिपोर्ट्स की डिटेल्स एक्यूरेट है तो मार्वल ने एंड गेम एनकोर के थ्रू पुरानी स्टोरी को अपकमिंग एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करने के क्लूज दिए हैं। तो ये सिर्फ एक सिंपल री-रिलीज नहीं है, फैंस के लिए एमसीयू का फ्यूचर को लेकर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जरूर क्रिएट करेगा। सो यस, बिफोर वॉचिंग डूम्सडे आई वुड हाईली रिकमेंड गो एंड वॉच दिस एवेंजर्स का जो फिर से री रिलीज हो रहा है। सो दिस इज नॉट जस्ट री रिलीज बट इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी एन अमेजिंग एंकोर वर्जन फॉर श्योर।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
2: Know someone who may need support to enrol or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
3: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
4: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
3: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% आरओआई प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट बिलकैप्स.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स
5: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
6: कभी भी कहीं भी
7: रेडियो नॉट योर फॉल्ट अगर आपने क्लेम कर लिया है नॉट योर फॉल्ट सर्विसेज को तो यस मूविंग फॉरवर्ड आपको जो क्लेम मैनेजर होते हैं वो जरूर कॉल करने वाले हैं आपके साथ जल्द ही टच में आने वाले हैं बट अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो इनटेक फोर जो है वो ओपन हो चुका है तो जल्दी से जाइए और आप अप्लाई कर सकते हैं बट यस एक चीज नोट करिए दैट नॉट योर फॉल्ट सर्विस फोन टीम इज करंटली कैपेसिटी नहीं है कि वो फोन उठा सके या फिर दे आर सो बिजी एक्चुअली सो यस रादर देन वेटिंग ओवर देयर एंड ट्राइंग टू कॉल देम I would highly recommend कि आप nyfservices.com पर जाइए और इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए या जी हाँ nyfservices.com पर जाइए और वहाँ से आप ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग इट

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
5: क्या बनाते हैं इन कबाब के स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
5: 100% authentic and pure as mother's love.
6: Get into New Zealand's greatest range of garden sheds online at Trade Tested. From classic steel sheds to fancy designer sheds to amazing tiny houses, Trade Tested is the best place to sort your shed out. Make your backyard great today.
7: Have you heard the news? Powerball has changed. There are now 14 Powerballs, meaning bigger prizes plus more winners with a brand new Division 8 cash prize. Imagine winning $10 million this Saturday. Get your Powerball ticket in-store or online.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault Services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault Services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.

0: Radio Pub.
1: क्या हाल दोस्त, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पॉप। मेरा नाम केतन है और मैं 6 बजे तक यहाँ पे हूँ। सुनते हैं एक अमेजिंग सा गाना और उसके बाद आपको लेके आता हूँ एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे आपको पता होगा मैं लेटेस्ट खबर के साथ साथ बॉलीवुड स्पोर्ट्स की भी खबरें।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Kia ora, namaste. Welcome back. You are listening to Radio Pub. चलिए अभी फटाफट से एक नई खबर पढ़ लेते हैं. Amazing यार, like amazing. नई खबरों से याद आया. आप ऐसे ही जुड़े रहिए because from morning 6 a.m. to all the way until 7 a.m. हम यहाँ पे रहते हैं. Then of course night club में भी आपका स्वागत करते हैं. तो बहुत सारी चटपटी खबरें आपको देखते हैं. So what you need to do is आप बस रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए. कंप्लीटली फ्री है. उसके जरिए आप हमें सुन सकते हैं. उसके जरिए आप हमें हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. प्लेलिस्ट है उसे आप सुन सकते हैं. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ड्राइव फॉर लॉन्गर रूट वहाँ पे भी आप सुन सकते हैं. सो एक से बढ़कर एक गाने भी मिल जाते हैं वहाँ पे. एंड साथ में ऑफकोर्स कुछ भी नया अपडेट आता है, न्यू आर्टिकल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को हम वहाँ पे पहुँचा देते हैं. बट यस, थोड़ी देर में आप सभी के लिए लेके आने वाला न्यूजीलैंड फर्स्ट नेम्स न्यू प्लेमथ वेटरन काउंसलर मॉरी चोंग एज इलेक्शन कैंडिडेट. ये मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेके आने वाला. तो यस, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी माय शो रेडियो पब अंटिल 6.

वेल यस, अभी की लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड पॉलिटिक्स फर्स्ट ने सॉरी न्यूजीलैंड फर्स्ट ने न्यू प्लेमथ के वेटरन काउंसलर मॉरी चोंग को अपकमिंग इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट चुन लिया है। चोंग न्यू प्लेमथ लोकल पॉलिटिक्स में काफी टाइम से एक्टिव रहे हैं और काउंसिल में उनका एक्सपीरियंस रहा है। अब वो लोकल गवर्नमेंट से नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट के अनाउंसमेंट के मुताबिक कैंपेन में लोकल इश्यूज के साथ साथ इमिग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट जैसे काफी टॉपिक्स उसमें ऐड हो चुके हैं। चोंग का कहना है कि उनका फोकस न्यू प्लेमथ और वाइडर तारानकी रीजन की कंसर्न को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना। उनकी कैंडिडेसी ऐसे वक्त में अनाउंस हुई जब पॉलिटिकल पार्टीज नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स और कैंपेन को शेप कर रहे थे। मुरे चोंग का लोकल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस उनकी कैंपेन का एक की पार्ट होगा, जबकि न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेशनल पॉलिसीज भी कैंपेन में सेंट्रल रोल प्ले करेंगे।

वेल, कुछ इवेंट्स होने जा रहे हैं हमारे शहर में, तो आपको मैं उसके भी अपडेट दे देता हूँ। गेट रेडी फॉर महिंद्रा न्यूजीलैंड दिवाली 2026 मनुकाओ वेलोड्रोम पार्क में। मोहम्मद सदीक एंड टीम आ रही है इंडिया से यहाँ पे परफॉर्म करने। डीजे लक्की ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। काफी फूड मिलने वाला है, डिलीशियस फन राइड्स फॉर द किड्स एंड अ स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स भी मिलने वाला है फाइनल में, एट द एंड। मनुकाओ वेलोड्रोम पार्क मनुकाओ, सैटरडे 3rd October 2026, नॉट वेरी फार फ्रॉम टुडे। दिन के 1 बजे से शाम के 9 बजे तक फ्री एंट्री है कंप्लीटली, इन एसोसिएशन विद NZI कम्युनिटी ट्रस्ट एंड AMI। ब्रिंग द होल फैमिली एंड सेलिब्रेट दिवाली। उसके साथ ही श्री राम कथा भी होने जा रही है इन द होली प्रेजेंस ऑफ पूज्य राजन जी। 30th September से लेके 6th October तक होने वाला है, शाम के 7 से 9 बजे के बीच महाप्रसाद सर्व्ड डेली। तो आप आइए, पधारिए 11 Brick Street हैंडरसन ऑकलैंड, जहां पे आपको श्री राम मंदिर में कथा सुनने का मौका मिलेगा। सो यस, वेरी वेरी एक्साइटेड, एंड डू विजिट ओवर देयर।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Bunnings has great value nailed across the store. And with daylight savings starting this weekend, we can help you replace those smoke alarm batteries with EverReady 9-volt battery 2-pack, just $5.69. Head in store or online for more great value.
3: This weekend's to-do list is filling up fast. Kids' activities, visiting the grandparents. But Woolworths takes going shopping off the list with delivery right to my door. I can even sit down before it arrives. That's my kind of Woolies.
4: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now. दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिल्डकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ, विजिट buildcaps.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स.
5: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
6: कभी भी कहीं भी.
7: वेल, अभी अभी खबर आई है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो होने वाला है सेकेंड T20 इंटरनेशनल क्राइस्टचर्च में, वो फुली बुक्ड हो चुका है और टिकट सारे बिक चुके हैं. सो आपके पास अभी भी मौका है, जस्ट इन केस इफ़ यू मिस इट आउट, आप वेबसाइट पे जाइए उनके और वहाँ से टिकट खरीद सकते हैं. 30th अक्टूबर को यहाँ पे होने वाला है एंड आई थिंक द सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड नवंबर को भी ऑकलैंड के ईडन पार्क में होने वाला है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड यार, मतलब मैं पहली बार एक्सपीरियंस करने वाला हूँ एंड मैंने तो अपनी टिकट ले ली है. इनफैक्ट मैंने अपने मॉम डैड के लिए भी लिए बिकॉज उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस होगा. हम चारों एक्चुअली मेरी बहन भी, हम सब साथ में बैठ के मैच देखा करते थे. ऑब्वियसली मम्मी को और दीदी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इतने घंटों बैठना, वो सब उनके पास 100 काम हुआ करते थे. मैं बचपन से ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिक मैच इतना देखता था, प्लस पापा जब भी काम से आते थे काम पे भी देखा करते थे क्योंकि वहाँ पे भी चैनल्स थे, वहाँ पे भी टीवी थी और घर आने के बाद कंटिन्यू करते मेरे साथ. सो यस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बकेट लिस्ट विच आई रियली वॉन्ट टू फुलफिल फॉर देम एंड होपफुली बारिश ना हो यार, बारिश की वजह से क्या चौपट हो सकता है काम. सो यू एम फिंगर क्रॉस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस मैच लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया. Oh, oh,

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें और आप सभी के मैसेजेस, गाने दमदार चले हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी कंटिन्यू रहने वाला है शो। बट यस, एंजॉय द सैटरडे, एंजॉय द वीकेंड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। गो आउट, हैव पार्टी, हैव फन, सेफ ड्राइव and spend your time with family. And yes, I will see you back again on Monday, Lunchbox Show mein 12 se 3. Tab tak liye bye bye, take care and have a good weekend. Love you.

0: Spotify or anywhere you get your podcast.
1: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम.
7: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: Yeah. Hello.
8: Hi.
9: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
8: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
9: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
8: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
9: Great. Sing it to me.
10: Advertise with
11: MediaWorks.
10: New Zealand listens to us.
12: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
13: अब हमारा क्या होगा?
14: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
2: तो क्या करें?
15: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
16: Elite Bathroomware Spring Sale is on now. Huge range of LED vanity mirrors. Complete range of kitchenware in any color theme, including brushed bronze. There's handles, sinks, taps, and Wastemaster accessories. Heated towel warmers in all sorts of styles, even floor mounted. All the brands, all the advice, all in one store. Elite Bathroomware, your Kiwi-owned bathroom superstore. Come in, be amazed, and touch it firsthand. Spring Sale on now for September only. Visit in-store or apply online for VIP access.
17: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
18: हाँ. अच्छा,
17: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
18: मिसेस सिंह.
19: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
20: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Hey! City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
3: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
4: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
5: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
6: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
7: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits. ये है Saturday Bollywood Buzz.

ठोकरें खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Irvine, sirf Rova par.
1: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
3: ऑकलैंड टाइम्स रनिंग आउट टू मेक योर इमरजेंसी प्लान दिस डेलाइट सेविंग वीकेंड व्हाट वुड यू डू इफ एक्सट्रीम हीट कॉज्ड अ पावर आउटेज हाउ वुड यू गेट होम इफ द ब्रिज इज क्लोज्ड इन अ स्टॉर्म If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
4: Zabardast hits. Shuru ho jaye to ruk dena. Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
5: ये है सैटरडे बॉलीवुड बज़

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: The DJ Mix.
1: DJ, turn it up.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
3: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
4: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
1: That is very that is a very
4: acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
1: Amazing acceleration.
4: This is my fancy English. That's a very.
1: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Big on style, great on price. Perfect for your home. Harrington Living Monaco.
2: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging? Clever tech. Impressive range and electrifying performance. Think MG. Thinking of safety features like a 360 degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
7: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% आरओआई प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
2: Party up, no. This is DJ Mix.

0: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजवे, ओनली ऑन हम।
6: डिब्बा खुल गया।
7: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
8: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया। हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
9: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
10: It's the one you've been waiting for. Rebel's end of season sale is on now. Score up to 50% off selected big brand clothing, footwear and more. Big brands, big savings. Get into Rebel Sport today. These deals and so much more. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
11: Did you know an EasyVote card makes voting easier and faster? To get yours, you need to enrol by midnight 4 October. So don't leave it too late.
12: Get your EasyVote card. Enrol by 4 October at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
13: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
14: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.

0: the DJ Mix.
1: DJ, turn it up.
2: Kabaddi, kabaddi, kabaddi.

0: myself into.
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल,

0: anywhere you get your podcast.
1: Ladies and gentlemen,
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hai raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan the.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Dubai mein invest karne ka sabse bada मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स
0: I wanna see the DJ mix.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Poke Koi, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Poke Koi, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
2: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनेचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर. द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एम तमन्ना.
7: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
2: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास.
8: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
9: हमें माता का बुलावा आया है.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in-store today.
1: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
2: Playing Bollywood's biggest

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: हेलो बोलो। हेलो दादाजी।
3: हेलो।
2: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड।
4: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

0: फाइनल है, कभी आई लव यू नहीं बोलना है, राइट?
1: राइट.
0: कूल. वैसे नेवर से आई लव यू को फ्रेंच में कैसे बोलते हैं?
1: Nadi jamai je t'aime.
0: Nadi jamai je t'aime. Ah, that's so sexy.

0: Night Flight on Hum.
1: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
2: Rusbi, tickets book ho gaye.
3: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
2: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
3: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
4: Fatiha.
3: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
2: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
5: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
6: Hello everybody.
1: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
7: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
1: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
8: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepy head beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us, Manikau and Pokekohe, where dreams begin.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: Playing Bollywood's biggest hits.
3: Budget gaane.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Manukau and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J2.
4: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
7: Kahani of Indelible Homes.
8: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में. बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM. देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड. डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन. रजिस्टर नाउ. विजिट bilcaps.com. प्रमोटेड बाय वेब टाइगर. Night flight.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: It's normal to feel low sometimes, just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services. Playing Bollywood's biggest hit.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. वेद प्रचार वीक विल बी हेल्ड फ्रॉम मंडे 28 सितंबर कल से टू संडे 4th अक्टूबर एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापातोयतोय फ्रॉम 6:20 PM. इसकी इस साल की ये हाईलाइट है कि ये इसकी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ Arya Samaj in New Zealand. And Shriram Mandir, 11 Brick Street mein, Henderson, Auckland mein, Shriram Katha hone wali hai. From Wednesday, 30th September, say Tuesday, 6th October tak, 7 to 9 PM. And Mahaprasad will also be served daily.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
2: Uber drivers, if you already have a claim with Not Your Fault services, it is moving forward and one of their claims managers will be in touch. If you have not applied, intake 4 is open. Not Your Fault services phone team is at capacity. So please don't call, apply online instead at nyfservices.com. That's nyfservices.com.
3: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में। बिलकैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM। देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI, प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड। डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन। रजिस्टर नाउ, विजिट bilcaps.com। प्रमोटेड बाय वेब टाइगर्स।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से, तो मैं हूँ आरजव के साथ. ये सक्सेस जो है सबके लिए डिफरेंट है. आई नो सोसाइटी की डेफिनेशन कुछ अलग है, बट इंडिविजुअली भी किसी के लिए डिफरेंट है. फ्रॉम यू नो सेटलिंग डाउन की मीनिंग जो कि है मैरिज या फिर घर खरीदने के लिए. सो विजय एंड पूजा हमारी ब्रेकफास्ट शो से, दे हैव डाइव्ड इनटू हाउ सोसाइटी हैज़ बीन मेजरिंग सक्सेस फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज, एंड लिसनर्स के साथ बात करके यू नो व्हाई आर एवरीवन रीडिफाइनिंग व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी सेटल्ड. इफ यू लव टू लिसन टू द होल चैट जहाँ पे विजय पूजा और लिसनर्स भी साथ में इसकी टॉपिक में जो बात कर रहे हैं, इट्स गोना बी इट्स सच अ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, ये आप सुन सकते हो. यू कैन टेक्स्ट मी बी एफ एंड आई सेंड यू द लिंक, बी एफ 5599 एंड आई सेंड यू द फुल ऑडियो.

आप सुन रहे हैं हम्बलिंग बॉलीवुड स्पीकर्स से, तो मैं हूं आरज़ाफ के साथ. इज इट जस्ट मी और हैज एनीवन एल्स नोटिस्ड अ लॉट ऑफ क्रिसमस की डेकोरेशंस जो है निकल चुकी है. इट्स नाउ बीइंग सेल लाइक सोल्ड डिफरेंट स्टोर्स में, वेयरहाउस के मार टाइप लाइक डिफरेंट स्टोर्स में. Do you think it's too early? Personally, for me, I think ये बहुत जल्द हो चुका है, because अभी तक हैलोवीन ख़त्म नहीं है. I think the perfect time for Christmas, ये shopping है, Christmas की decorations and all that, you know, Christmas tree जो लगाते हैं, I think it should be after Halloween. But it's already out a lot of stores में. आपको क्या लगता है? Is it too soon? Or time ठीक ही है? What do you think? 555-99 पे please message me.

0: बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम दिल के बुरे नहीं बस

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक से, तो मैं हूँ आरजू आपके साथ। वर्ल्ड की पहली 24/7 फ्री फीजी भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को आपको सरोवा में मिल सकता है। रोवा ROVA ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। यहाँ पे आपको भजन एंजॉय कर सकते हो फीजी की बेस्ट आर्टिस्ट से एनीवेयर इन एनी टाइम।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली बस मेरा फोकस है.
2: हाँ. अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
5: Auckland, time's running out to make your emergency plan this daylight saving weekend. What would you do if extreme heat caused a power outage? How would you get home if the bridge is closed in a storm? If you received a tsunami warning, where would you go? Take the time this weekend to sit down and make an emergency plan. Brought to you by Auckland Emergency Management and Auckland Council. Make your plan at aem.govt.nz.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: राज, रोमांस, एक्शन और सुपरनैचुरल पावर से भरी कहानी, एक थ्रिलिंग फैंटेसी एडवेंचर, द वन, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना.
8: इस वन की काली शक्ति रात के साये से भी काले.
7: द वन नाउ शोइंग इन सिनेमास.
9: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है,
10: जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास.
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग TBC.
11: हमें माता का बुलावा आया है.
6: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
12: Chill, sip, smile.
13: This is Sunday Breakfast.
14: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरजू आपके साथ. सो सैंड्रू रिस्बे की रीसेंट एपिसोड अनफिल्टर्ड में दे टॉक्स अबाउट एस्टेट प्लानिंग कॉन्वर्सेशंस दैट मेनी फैमिलीज अवॉइड. तानिया पिंटो जो कि एक सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट बर्स्ट आउट सम कॉमन मिथ्स अराउंड विल्स and explained what can happen when there's no will and reveal some of the simple steps you can take now to make things easier for your loved ones later. Because obviously planning for death isn't about expecting the worst. It's about making sure your family isn't left figuring everything out when you're no longer there to explain it. If you'd love to listen to this whole chat between Sandy and Rizbe or Tanya, text DRIVE on 5599 for the full episodes.

0: meter.
1: आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से, तो मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड इफ आप मुझे अभी गाड़ी से सुन रहे हो, एंड इफ यू वांट टू कीप लिसनिंग, यू कैन डाउनलोड द ऐप रोवा ROVA ऑन द प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर, एंड यू कैन स्टिल लिसन ऑन योर फोन.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से समय हुआ आरज़ आपके साथ. सो पूजा और विजय हमारी ब्रेकफास्ट शो के से दे डिस्कस्ड अबाउट हाउ सोसाइटी सक्सेस को मेजर करते हैं एंड यू नो लाइक हाउस या फिर वेडिंग मैरिज हो के या डिग्री. सो दे आस्क्ड एंड द लिसनर्स केम थ्रू दे ऑल रीडिफाइन व्हाट इट रियली मीन्स टू बी सेटल्ड. क्योंकि ऑब्वियसली सक्सेस की डेफिनेशन एवरी वन के लिए डिफरेंट होता है बट दे टॉक अबाउट लाइक सोसाइटी ने बना हुआ सक्सेस का यू नो डेफिनेशन. सो इफ यू लव टू लिसन टू दिस ऑडियो टेक्स्ट बी एफ टू 5599 एंड आई विल सेंड यू द लिंक एंड दे विल बी बैक टुमारो एट 6 AM.

मैं पहले कभी इतनी खुश नहीं रही, ना ही इतनी कंफ्यूज्ड। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं जा रही हूँ, कहाँ पता नहीं, लौट कर आऊंगी पता नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. इफ़ यू डिडंट नो, हमारी रोवा ऐप में ROVA में आपको ढेर सारी म्यूजिक स्टेशंस मिलेंगे, फ्रॉम हम रिवाइंड जहाँ पे आपको बॉलीवुड की गोल्डन एरा 60s से 70s के हिट्स मिलेंगे. वी ऑल्सो हैव 80s की जुक बॉक्स जहाँ पे आपको नॉन स्टॉप 80s के गानों मिल सकते हैं. एंड देन वी ऑल्सो हैव चढ़ती कला पंजाबी हिट्स जहाँ पे नॉन स्टॉप फ्रेश न्यू हिट्स और पंजाबी सॉन्ग्स मिलेगा आपको. वी ऑल्सो हैव राहत फतेह अली खान की फैंस के लिए सूफी कवालीज इन द स्टेशन. एंड वी ऑल्सो हैव फीजी भजन, ये दुनिया की पहली 24/7 फ्री फीजी भजन है. सो या यू कैन एन्जॉय वॉट एवर सॉन्ग, वॉट एवर प्ले लिस्ट, वॉट एवर म्यूजिक स्टेशन जस्ट ऑन रोवा.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ आर्ज आपके साथ. ऑकलैंड की ये दिवाली सेलिब्रेशन बाय द वे इज हैपनिंग ऑन अक्टूबर 3rd सैटरडे 1 PM से 9 PM तक. इट्स गोना बी एट मनुकाओ वेलड्रम पार्क मनुकाओ. And Muhammad Sadiq and team will be here live from India, and also DJ Lucky all the way from India. Khana, obviously, there's going to be delicious foods, and also there's going to be some fun, amazing rides for the kids. It's going to be an absolute night, or fireworks bhi hoge, honga? Fireworks bhi hoga. And then, yeah, it's going to be exciting, and it is free entry.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट्स और मैं हूँ आरज़ाब के साथ. रणबीर कपूर की जो नई फिल्म है इसका नाम है रामायणा एंड ही इज एक्टिंग एज लॉर्ड राम इन दिस फिल्म. एंड इसमें एक डिटेल्स की लीक हुआ है अबाउट अ शॉट. सो ये एक सीक्वेंस है, इट्स अ वन टेक, आई मीन वन शॉट वाली टेक जिसमें इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स अपेरेंटली. एंड इस शॉट में ही इज अ पार्ट ऑफ इट एंड अपेरेंटली इट टुक नियरली 50 टेक्स 50 टू बी परफेक्ट. आई एम वेरी वेरी वेरी इंट्रीग्ड टू नो कि ये शॉट, ये सीन क्या है दैट टुक देम दैट मेनी टेक्स. बट या दिस मूवी इज गोना कम आउट सून, बट आई डोंट, आई एम एक्साइटेड. आपको क्या लगता है?

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरजव के साथ. सो फ्रोजन योगर्ट एके फ्रोयो इज वन ऑफ माय फेवरेट डेजर्ट्स, क्योंकि इतना मुझे योगर्ट भी पसंद है एंड आई लाइक फ्रोजन योगर्ट भी. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स फॉर श्योर. एंड फाइनली ऑकलैंड में इतना सारा फ्रोजन योगर्ट स्पॉट्स खुल चुका है. आई रिमेंबर जस्ट टू ईयर्स अगो इट वॉज ओनली वन प्लेस जो मुझे पता था ताकपुना में. But now that there's so many open, I now have two favorite spots jahan ki quality bahut acha hai and the options are so many that it's always so fun going there and making new bowls. But to be honest, I end up getting the same things, similar things. So, but anyways, number one, I have, these are both number ones, by the way. But first, I'm going to talk about Yogo Bay. So, ye Chancery Square mein nazdeek mein hai, like Shortland Street mein. ऑकलैंड सी बी डी में योगो ब्रे एंड ओ माय गॉड बहुत अच्छी ऑप्शंस है फ्रोजन योगर्ट की. एंड असाई भी मिलता है इफ़ यू लाइक असाई. एंड द अदर वन दैट आई रियली लव इज शिबीज. सो ये न्यू मार्केट में आपको मिलेगा एंड ओ माय गॉड इसकी भी ऑप्शंस इतना ज़्यादा है. एंड टॉपिंग्स की ओ माय गॉड टॉपिंग्स आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट टॉपिंग्स आई हैव सीन एनीवेयर इन ऑकलैंड. सो highly recommend Shibis. Ye New Market mein hai and Yogo Bay. Both are amazing. They have so many flavors. Bahut tasty hai. So if you want to take your family and friends, those two are my top two recommendations.

0: प्रेम पुजारी।
1: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, मैं हूं आरज आपके साथ। ऑकलैंड आपकी बिग दिवाली सेलिब्रेशन आ रहा है अक्टूबर 3rd को, नेक्स्ट मंथ। ओ माय गॉड, इट इज सो अर्ली। 1 PM से 9 PM तक इट्स गोना बी फ्री एंट्री एंड दिस इज ऑल हैपनिंग मनुकाव वेलड्रम पार्क पे। मनुकाव में मोहम्मद सदीक और टीम लाइव फ्रॉम इंडिया, डीजे लकी भी आ रहा है ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। खाना तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, सो इट्स गोना बी देयर हीप्स ऑफ फूड स्टॉल्स। All बच्चे के लिए फन राइज भी होगा एंड अ ब्यूटिफुल स्पेक्टेकुलर fireworks finale bhi hone wala hai. So this is all happening in association with Incidai Community Trust and AMI. So it's gonna be a night to remember. So date hai October 3rd, Saturday ko, from 1 PM to 9 PM.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन लिए पहन के यार. क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए? कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe, where sleepyhead comfort meets exceptional value. Beds R Us Monaco and Pukekohe, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura J Crew.
4: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex, and this is my guest Sarah.
5: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो ज्यूसी.
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
7: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5K min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply. Coming

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हिट सो मैं हूं आरज़ आपके साथ एंड यू नो लाइक समटाइम्स इट्स बीन इयर्स सिंस यू लास्ट लिसन टू एक सॉन्ग एंड सडनली दैट सॉन्ग प्लेज ऑन योर प्ले आई गेस योर सॉन्ग प्लेयर में एंड इट हिट्स यू विद नॉस्टैल्जिया एंड मुझे भी ऐसे हुआ था फ्यू डेज बैक I was just cleaning my room and had my Bollywood playlist on repeat. I mean, shuffle me. And suddenly, ye gana play hua tha.

0: अब टाइम है स्प्रिंग क्लीनअप का माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के साथ क्लीनिंग स्टोरेज शेल्विंग रैकिंग और भी बहुत कुछ पे मिलेगा जबरदस्त सेविंग्स टीज एंड सीज अप्लाई एंड्स अक्टूबर 14 स्प्रिंग क्लीनअप ऑन नाउ एट माइटिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
1: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check, or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
2: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिल कैट रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 AM टू 8 PM देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% ROI प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट DLD डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट billcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
3: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी
4: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना
3: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Chill, sip, smile.
3: This is Sunday Breakfast.
4: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हिट्स. मैं हूं आरजू आपके साथ. वेद प्रचार वीक हेल्ड होने वाली है कल से मंडे 28 सितंबर से वन वीक के लिए 4th अक्टूबर तक. दिस इज संडे एंड इट्स गोना हैपन एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापातोई फ्रॉम 6:20 PM. इस साल की हाईलाइट है टू सेलिब्रेट 30th एनिवर्सरी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्या समाज इन न्यूजीलैंड. और श्रीराम मंदिर में 11 ब्रिक स्ट्रीट ऑकलैंड हेंडरसन में श्रीराम कथा होने वाली है वेनेसडे 30th सितंबर से 6th अक्टूबर तक 7 to 9 PM शाम में. एंड महाप्रसाद विल ऑल्सो बी सर्व्ड डेली. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट 09836 4647.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. नेक्स्ट अप आई बी शेयरिंग विद यू ऑल द बॉलीवुड मूवीज दैट आर रिलीजिंग हियर इन आउटियारोवा न्यूजीलैंड, इवन सिनेमाज, रीडिंग सिनेमाज या फिर होइट्स पर.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111. Indelible Homes, your building expert.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक से समय हूँ आरज़ू आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी. बहुत मजा आया एज ऑलवेज एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.

0: $1 cash. Ends Monday at Briscoe's. See online for TCs and exclusions.
1: The Entrust dividend of $377 has just been paid. Woohoo! 374,000 Auckland households and businesses in the Entrust district are sharing $141 million. So go on, celebrate having a bit extra in your pocket. Treat yourself, pay some bills, or stash it away. You choose. Haven't got yours yet? Check entrustnz.co.nz to see if you qualify. Enjoy your Entrust dividend, Auckland.
2: दुबई में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा मौका अब न्यूजीलैंड में बिलकैच रियल एस्टेट एंड बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स प्रेजेंट्स बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो 26 एंड 27 सितंबर एट जेडब्ल्यू मैरियट ऑकलैंड 10 एएम टू 8 पीएम देखिए दुबई के बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अप टू 20% आरओआई प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स पर 0% टैक्स और क्वालिफाइंग यूनिट्स पर अपफ्रंट डीएलडी डिफर्ड डेवलपर प्रिंसिपल से सीधी बातचीत इन पर्सन रजिस्टर नाउ विजिट bilcaps.com प्रमोटेड बाय वेब टाइगर
3: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
4: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
5: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
6: That is very that is a very acceleration.
5: That's a very acceleration. Yeah.
6: Amazing acceleration.
5: This is my fancy English. That's a very.
6: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ और 6 तक ये सिलसिला ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा। पहला मैसेज आ चुका है, गुड आफ्टरनून अभी, फील्स नाइस लिसनिंग टू यू। तो क्वीन हैज ट्यून्ड इन, अरे ये तो राइम हो गया। हाँ, तो क्वीन हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और अगर जो आप भी सुन रहे हैं और साथ दे रहे हैं हमारा, तो आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो आप किस टाउन या सिटी से हमें सुन रहे हैं। तो अपना नाम भेजिए और किस टाउन और सिटी से आप हमें सुन रहे हैं, हमें ज्योग्राफी का पता लगेगा कि किस शहर में आप हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। रोवा पर और 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, वट एवर योर करंट लोकेशन इज़, आप हमारे साथ में शेयर करें ताकि हमें भी पता लगे कि न्यूजीलैंड में आप किस शहर में हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। और अगर जो उसी मैसेज में आप भेजना चाहते हैं कुछ सुनने के लिए, कोई नगमा है, कोई गाना है जो आप आज खास सुनना चाहते हैं, तो इसकी भी रिक्वेस्ट आप हमारे पास में भेज सकते हैं। 5599 इज द नंबर। और कहां से आप हमें सुन रहे हैं शेयर करिए हमारे साथ में।

हम पर मैं हूं अवि आपका साथी। और जबकि हमने पूछा था कि आप अपने लोकेशन बताएं कि कहां से आप हमें सुन रहे हैं, तो अभी तक दो लोगों ने रिस्पोंड किया है। श्रुति फ्लैटबुश से सुन रही है ओकलैंड में और इंजॉय कर रही है प्रोग्राम। इसके साथ में एक इंटरनेशनल लिसनर है हमारे साथ में रोवा पर, हमें सुन रहे हैं सैन फ्रांसिस्को से अमन, और अमन इंजॉय कर रहे हैं हम पर हमारा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए। अब मुझे ये जानना है, क्या हैमिल्टन में कोई नहीं सुन रहा, या फिर रोतरुआ में आप है सुन रहे हैं हमें, या फिर वेलिंगटन में है, या फिर फांगरे में है, यहीं ओकलैंड में आप मनीरेवा में हैं, या फिर आप एप्सम में हैं, आप जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं अपना लोकेशन ज़रूर भेजें हमारे साथ में। जबकि इतने टाउन्स एंड सिटीज़ का हमने नाम ले लिया है, तो आपको एक झलक वेदर के बारे में भी बता दूं। आपको पता होगा शायद कि साउथ आइलैंड में ओवरनाइट स्नो भी हुआ है, और इसके साथ में ओकलैंड सीबीडी के लिए अगर जो देखें आज के लिए मौसम, तो बताया जा रहा है कि ओकेशनल रेन और साथ में एली इवनिंग में भी कुछ शावर्स रहेंगे जो बाद में जाकर रात में क्लियर हो सकते हैं, और वेस्टर्लीज की दिशाओं से हवाएं बहेंगी फॉर अ स्ट्रॉन्ग फॉर अ टाइम इन आफ्टरनून, यानी कि शाम को वेस्टर्लीज डायरेक्शन में हवाएं बहेंगी जो ज़्यादातर के गस्ट रहेंगी। अभी आते आते रास्ते में मैंने देखा कि ओकलैंड हार्बर ब्रिज में भी वार्निंग दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग गस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो इसके साथ साथ ये जो मौसम है आज ओकलैंड के लिए खास फोरकास्ट किया गया है, सनसेट एट 7:22 PM, मिनिमम टेम्परेचर्स ओवरनाइट एट 10 degrees। अगर जो नेशनली देखें तो हैमिल्टन में भी ऐसा ही कुछ वेदर कंडीशन फोरकास्ट किया गया है। साथ में रोतरुआ में कुछ मिक्स्ड वेदर सा दिन रहेगा, कुछ धूप भी खिलेगी, साथ में कुछ बारिश भी होगी। इसके साथ में तोरंगा में भी ओकलैंड जैसा हाल है, और साथ में न्यू प्लिमथ में भी इट्स गोइंग टू बी रेनिंग ऑल डे, और साथ में वेलिंगटन में भी ऐसा ही कुछ फोरकास्ट किया गया है। साउथ आइलैंड में मिक्स्ड वेदर कंडीशन रहेगा, ओकेशनल शावर्स और साथ में धूप भी रहेगी। राम हमें सुन रहे हैं मनीरेवा से, थैंक यू सो मच शामिल होने के लिए, आप हमारा साथ देते रहें। अब की बार के लिए शामिल करते हैं विशाल मिश्रा को, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नंबर एज वेल, आप भी इसे सुनकर इन्जॉय करेंगे अपना जो संडे है जस्ट चिल विद अवि। एंड इसके बाद में और भी बातें होती रहेंगी आपके साथ में, लेटेस्ट अपडेट्स जानकारियां ये सभी कुछ शेयर करते रहेंगे। 1, 2, 3, 4.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर इस 20 मिनट्स अवे फ्रॉम वन और आपको बता दूं जबकि आज है संडे 27th ऑफ सितंबर तो ऐसे में दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था जबकि कशिका जी वहां से ब्रॉडकास्ट कर रही थी लाइव रिपोर्ट्स दे रही थी तो यहां पर एक मौका है अगर जो आप जानना चाहते हैं दुबई के बारे में कैसे वहां पर आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आज सुबह 10 से एक बार फिर यहां पर जो प्रॉपर्टी एक्सपो है JW मैरियट ओकलैंड में शुरू हो गई है ये रात 8 तक चलती रहेगी और कल जबकि मैंने भी थोड़ा सा सुना था ध्यान देकर तो मैंने सुना था कि कुछ स्टूडियोज़ है जहां पर 250,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स में आप इसे एक्वायर कर सकते हैं और ब्रांडेड है गेटेड है तो अगर जो आप जाकर चेकआउट करना चाहते हैं गोल्डन रेसिडेंस वीज़ा के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो JW मैरियट इज़ द प्लेस आज ओकलैंड में सुबह 10 से लेकर रात 8 तक जो प्रॉपर्टी एक्सपो है ये चलती रहेगी तो अगर जो आप भी कुछ सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में जहां पर ज़ीरो टैक्स आपको लगे तो ये सभी कुछ मौका है JW मैरियट ओकलैंड में आज आप जा सकते हैं।